श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिनाम मदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत

0: TFM 101.3.
1: Work from home. High salary. Just ఒక క్లిక్లో. అరే వా.
2: చిక్కుకుంది.
3: తెలియని లింక్స్ ని క్లిక్ చేయకండి. RBI అంటుంది.
2: తెలివిగా ఆలోచించండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి.
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान. आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए. इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान. नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की. आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
0: विंटनारो विविध भारती FM 101.3.

देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। इस वर्ष 3 विभागों से कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के 48 शिक्षक, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक एवं संकाय सदस्य और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

0: शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल शैक्षणिक ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक महान जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि शिक्षक ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री जोशी ने महान विद्वान दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that, they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves

0: Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. India have already secured a place in the semi-finals after recording convincing victories over Thailand and Hong Kong in their previous two matches. The Indian team will now look to maintain its winning run and finish the group stage with a perfect record. Pakistan, meanwhile, have played just one match. They began their campaign with a win over Thailand. The team currently has 2 points in Group A and needs just one more point from its remaining two matches to qualify for the semi-finals. In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wik Yong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. The Indian pair defeated Denmark's Kemar Stroop and Anders Karup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in the quarter-final yesterday. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today held an inter-ministerial virtual meeting with Jal Shakti Minister C.R. Patil and other senior officials to review preparations for Swachhata Hi Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its ninth edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts, relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं।

0: हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
0: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सके। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
3: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारक्रीट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
3: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए हैं।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन

0: विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जल स्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: కిసాన్ వాణి కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. సమయం 7:45 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో మహిళల ఆసియా కప్ T20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్ 2026లో భాగంగా భారత్ పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య దుబాయ్లో జరిగే మ్యాచ్పై ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం సాంప్రదాయ రేడియో సెట్లలో మరియు ఎఫ్ఎం రేడియో సెట్లలో ప్రసారమవుతుంది. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు. అలాగే న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్లో రోజువారీ కార్యక్రమాలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయి.
7: है वहाँ देखनी होगी, तभी आप जब उनको एक प्रेशर में लेकर आएंगे डॉट बॉल्स के साथ या उनको रन बनाने नहीं देंगे तभी उनका विकेट मिल सकता है. अदरवाइज तो मैंने उनको जितना भी देखा है खेलते हुए वो रन्स जो है बनाती ही रहती हैं, स्कोर बोर्ड को कहते हैं ना चलाती ही रहती हैं
8: जी. और शो को आगे बढ़ाते हैं, वापस अपने कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं. नमस्कार जी, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम जरूर कम कर लें ताकि हमारा इको ना सुनने में आए जी. क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी? जी

0: जी जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। हालांकि एक चीज कही जाती है, इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, और ओपनिंग एक ऐसी चीज है भारत के लिए जो लगातार रिवॉर्ड्स दे रही है सभी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जिसे मोमेंटम ब्रेक नहीं करना चाहिए, और जब आपकी ओपनिंग प्लेयर जो है जब आपको एक स्ट्रांग फाउंडेशन दे रहे हैं एज अ बैटर्स, वो जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जैसे क्रंच गेम में है ना किसी भी तरीके के ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। और जब आप और विनिंग कॉम्बिनेशन जो आपके हैं जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, और टीम जब बहुत दो अच्छी बड़ी विक्ट्री दर्ज करके आ रही है इस गेम में, तो और वैसे तो ऑलरेडी इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन जैसे उन्होंने सजेशन दिया है वो ठीक है, लेकिन टीम मैनेजमेंट भली भांति जानता है कि भले ही आपका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, 14-3 का रिकॉर्ड है, और आपने एशिया कप में भी वो डोमिनेंस दिखाई भी है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ गेम आता है तो एक अलग तरीके का प्रेशर तो रहता ही है, फील्ड पर भी रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है, और वो जो कहते हैं ना बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो रहती ही रहती है। और ये एक सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही नहीं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ है, क्योंकि जीतना का जज्बा तो दोनों तरफ ही है, लेकिन एक जो भारी दबाव भी है जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर वो भी रहता है। तो ऐसे में

0: The top scorer in the Pakistan innings was Shahwal Zulfikar, who made 14, and then Munib Ali made 13. Rest of them all out in single digits. As we watch the next ball from Sri Chani, and this time using her feet down the wicket is Tuba, driving it away down to long off. She'll get a single for it, bring Sadia to take strike, and Pakistan go up to 55 for 9. India will be hoping to finish this match as early as possible. India have already claimed 4 points. This has been a resounding victory for them so far, and a victory here against Pakistan would just be the perfect icing on the cake, the cherry on the icing. Here is Sri Chani, looking forward to a fourth wicket, bowling left arm over, this time short outside the off stump, tempting Sadia to go for the square cut, doesn't succeed. Luckily for her, the ball not taking the outside edge, so wickets have fallen rather easily here. And the Pakistan batters have not shown any stomach for the fight at all. They have caved in meekly. This has been a meek surrender as we watch the next one outside the off stump, left alone by the batter. And the total after completion of 18 overs is 55 for 9. Will they be able to bat over the complement of the next 2 overs? To describe, it is going to be Dharmendra Mani Rajesh.
1: So Pakistan ne abhi tak banaye hain 18 overs ke baad 55 run 9 wicket ke nuksan par. और श्री चढ़नी ने इस बीच में अपने 4 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है. बहुत किफायती रही हैं अभी तक भारत की तमाम गेंदबाज, श्री चढ़नी भी उसमें से शामिल. 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट उन्होंने लिए हैं. रन रेट पाकिस्तान का 3.06 का. 2 ओवर की बल्लेबाजी और पाकिस्तान के लिए बची हुई है. दिलचस्प ये है कि क्या वो 2 ओवर यानी 12 गेंदों का सामना अंतिम विकेट की साझेदारी में पाकिस्तान की टीम कर पाएगी. पिछला विकेट जब पाकिस्तान ने गंवाया था तब स्कोर था 54, 1 रन अभी उसमें जुड़ा है. और अब गेंदबाजी पर दीप्ति शर्मा, जिन्होंने अपने 3 ओवर में अब तक 5 रन देकर 1 सफलता अर्जित की है. सबसे सफल गेंदबाज अभी तक इस टूर्नामेंट में दीप्ति शर्मा भी रही हैं भारत के लिए. भारत के लिए अच्छा खासा समर्थन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में. पहली गेंद इस ओवर की और स्टंपिंग का एक मौका. क्या स्टंपिंग का वो मौका हाथ से गया या विकेट भारत के खाते में आ गया है? इस समय तीसरे अंपायर की तरफ फैसला और इंतजार इस बात का कि तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है. लेग स्टंप पर थी गेंद, क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास किया, गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी सादिया. इकबाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, तुबा हसन थी स्ट्राइक पर और पूरी तरह से गेंद को समझ ही नहीं पाई. अंपायर ने यहां पर आउट तो करार दिया लेकिन तीसरे अंपायर को यह फैसला देना है कि क्या क्रीज में पहुंची थी या नहीं. इंतजार तीसरे अंपायर के फैसले का.
2: About sufficient processing. There is no one single percentage applicable to everything. The India-EU agreement has product-specific rules of origin depending on the product, and the test can evolve requirements such as a specified level of value addition, a change in tariff clarification, specified manufacturing or processing operations, or a combination. In fact, there's a whole annexure in Chapter 3 which has published specific rules here. So, exporters can look at it detail for their product, but just for an idea of some examples for the listeners, it could be if we buy fabric and other inputs, but if it cut, stitch and manufacture the trousers in India, buttons may be imported from elsewhere, but the finished trousers exported, so it is considered as made in India. I'm just giving you a textile, but if you import a finished trouser from somewhere else and just repackage it in India, it does not qualify. So just for example, the textile product.
3: Minister Goyal has also urged an FTA outreach program reaching all 780 districts covering MSMEs and small businesses. What should a typical MSME, Dilip, in say Ludhiana, Tirupur or Rajkot do in the next 90 days to get FTA ready in documentation, compliance and buyer outreach?
2: First important thing is MSMEs often have product but lack the scale, market access, certification capability or other means to exports. If you look at, for example, textiles, apparel, leather, footwear, engineering goods, toys, furniture, processed food, gems and jewelry, there is a very

0: या शादियां हैं वो ठीक है, वो मतलब वही एंड में वही बात आती है कि आपके पास रन्स ही नहीं है उतने तो आप क्या ही डिफेंड करेंगे, बट देखते हैं कि कुछ क्या एक दो विकेट चटका पाते हैं पाकिस्तान या नहीं।
1: ऑफ कोर्स, और आप हमारे शो को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 011-2342-1084। आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, या आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करिए और ज्वाइन करें हमारा शो। और देखा जाए तो लतिका जी, ये जो पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है ये इंडिया के लिए तो लग रहा है हमें कि आसान होगा, मगर नेट रन रेट भी बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान एक ही मैच खेला है, तो दूसरे मैच में अगर आज कॉम्प्रिहेंसिवली हार जाता है तो उनका नेट रन रेट बहुत कम हो जाएगा, एंड अभी एक मैच बाकी है हांगकांग के खिलाफ।
2: बिल्कुल, देखिए एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में अगर आप आते हैं एक डोमिनेंस टीम के साथ आते हैं, और इंडिया ने ये साबित भी किया अभी तक जितने भी गेम हुए हैं कि डोमिनेंस के साथ वो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिश थी जो पिछले मैच खेला उन्होंने, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस आना थोड़ा सा निराशाजनक जरूर लगता है। और हाँ, आगे आने वाले उसमें नेट रन रेट कितना नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तानी टीम को, वो तो आज का मैच जब खत्म होगा तब पॉइंट टेबल जो निकल के आएगी उस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से पाक अपनी पोजीशन को बनाए रखता है।
3: जी बिल्कुल, और अभी जो स्थिति बनी हुई है, भारत ने दो मुकाबले अभी तक खेले हैं, जो दो पूरे मुकाबले हैं जिसमें चार पॉइंट अपने नाम किया है, पाकिस्तान के लिए ये दूसरा ही मुकाबला है, पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी, तो हालांकि लग रहा है क्योंकि हांगकांग के विरुद्ध उतरेगी पाकिस्तान की टीम तो ओवरऑल सेमीफाइनल तक तो शायद पहुंच ही जाए, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति में आती है जब टीम अपने लोएस्ट स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है तो मनोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ध्वस्त कर सकता है ऐसा मैच टीम को।
0: बिल्कुल, अगर जैसे अगर आज वो पाकिस्तान, देखिए रन रेट का तो एक फर्क पड़ेगा ही, 55 रन के साथ आप मतलब डिफेंड कितना ही कर पाएंगे, लेकिन चलिए अगर आप ये मैच नहीं भी जीत पाते जो कि लग ही रहा है जिसका आउटकम, तो अब आप सेमीफाइनल हांगकांग से आप खेलेंगे, हांगकांग के खिलाफ आपको एक अच्छी जीत दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, अगर आप हांगकांग के खिलाफ भी जैसे तैसे करके जीत के पहुंचते हैं तो आपका मोरल तो डाउन रहेगा, क्योंकि इंडिया के मैच ने तो आज आपका मोरल बिल्कुल ही डाउन कर दिया होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होगा। हांगकांग के अगेंस्ट पाकिस्तान एक अच्छी विक्ट्री दर्ज करना चाहेगा, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी है कि शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सके, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट बॉलिंग शायद हांगकांग की नहीं होगी, और शायद जहां तक है वह पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो हांगकांग को है ना, हांगकांग के बैटर्स को घेर भी लेंगे, तो हांगकांग से जीत जाएंगे, लेकिन अगेन फिर जब सेमीफाइनल में आएंगे तो वहां पर मुझे लगता है कि फिर से बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान को।
2: लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी, हांगकांग की गेंदबाजी ने जो असर दिखाया था भारतीय टीम के अगेंस्ट, तो उनको भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने इस तरीके से लड़खड़ाई है तो अगला मैच यहां से किस तरीके से जाता है वो देखना होगा।
3: जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प होने वाला है ये एशिया कप टूर्नामेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना सारा विश्लेषण देने के लिए, और अभी सीधे चलते हैं और लाइव एक्शन से जुड़ते हैं, भारतीय टीम 56 रन का टारगेट चेस करती हुई।
4: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
5: नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2020 2026 का यह मुकाबला, जिसमें भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी की और पाकिस्तान की टीम को सस्ते में समेट दिया, और भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद, और पहली गेंद पर ही शेफाली वर्मा ने लॉक कर दिया इस गेंद को सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ पर 6 रन के लिए। भारतीय पारी की शुरुआत 6 रन के साथ। मैं धर्मेंद्र मणि राजेश, अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिपनेस, स्कोरर भागवत सिंह रावत, स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुम्बडे के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। अगली गेंद को एक बार फिर से खेला है शेफाली वर्मा ने 1 रन के लिए, और इस 1 रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य बहुत छोटा आज भारत के सामने, सिर्फ 56 रन का। भारतीय स्पिनर्स ने आज कमाल की गेंदबाजी की, पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 55 रन पर समेट दिया, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की महिला टीम का न्यूनतम स्कोर है। शेफाली वर्मा ने इसके साथ ही

विमेंस टी20 क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। अगली गेंद इस बार स्मृति मानधना के लिए, ऑफ स्टंप पर टर्न होकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद छोड़कर जा रही थी, बल्ला चलाया था स्मृति मानधना ने, एक अपील जोरदार गेंदबाज सादिया द्वारा। ये गेंद पड़ने के बाद टर्न होकर बल्लेबाज को छोड़कर निकल रही थी, जगह बनाना चाह रही थी स्मृति मानधना स्ट्रोक के लिए। बीट हुई, किस्मत वाली रही कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया। अगली गेंद इस बार शरीर से दूर, बढ़िया स्ट्रोक मिड ऑफ की तरफ, एक रन के लिए जरूर जाएंगी और ये एक रन अंत में आसानी के साथ पूरा हुआ है। स्कोरिंग की शुरुआत हुई स्मृति मानधना के लिए और भारत का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। दिलचस्पी की बात सिर्फ यही है कि भारत 56 रन के इस लक्ष्य को कितने ओवर्स में पूरा करता है। जीत तो लगभग भारतीय टीम की तय दिखाई दे रही है। शेफाली वर्मा के लिए यह गेंद इस ओवर की चौथी गेंद, उसको फ्लिक कर दिया है ऑन साइड में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाज।

0: September 23 between UAE and Namibia. The new batter out in the middle was Pratika Rawat, and that was what one felt as the next one is short in length outside the off stump to Pratika. Pratika is on to the back foot and pushing it on the offside, not for run. Pratika Rawal made 22 in the first game against Thailand. She was out for 10. So the middle order batters today would have loved to have a go, because Harmanpreet Preet too, along with Bharti Fulmali and Richa Ghosh, haven't been amongst the runs. That is only a major cause for concern going into the semi-final. The openers have done well. The spinners have done a fantastic job so far. And it is on the back of some fine bowling that they have been able to get rid of the opposition. As the next one is down the leg side from Pratima, the wicketkeeper standing up, white signal, taking the score up to 14 for the loss of one wicket. Quickly updating late tuners, match number 9, Group A, Dubai International Cricket Stadium, India and Pakistan. Pakistan, through their captain Fatima Sana, won the toss, elected to bat. They were 27 without loss, looking good at that point of time, although there were a few reprieves that the Indian batters got. But thereafter, wickets fell in clutches, wicket fell in clusters. As the next one, outside the off stump, throwing the bat at that one, gets the outside edge, misfielded by Sadia on the boundary at third man. She did manage to get her hand to it. The captain Fatima is not impressed at all. 4 runs easily conceded, and that takes the Indian total up to 18 for 1. Pakistan all out for 55, and this is their lowest all out total. Their previous lowest was 56 against New Zealand in 2024. Indians then doing a fabulous job here to the spinners, with Sri Cherny and Prema Rawat picking up 3 runs apiece. The top scorer was 14 by Shahwal Zulfikar and 13 by Munib Ali, and thereafter no one got into double digits. Target is 56. Can India make a mocker of it and finish it off in the first power play? Next one beats the batter, and she's out, caught behind. Short outside the off stump, and looking for that shot on the offside was Pratika Rawat. Once again, Pratika Rawal continuing her non too impressive form, caught behind, and Fatima has picked up yet another wicket to a ball which was short in length outside the off stump, looking to punch it off the back foot, got the outside edge, and the wicketkeeper standing up, making no mistake at all. 18 for 2, 2 overs gone, caught by Munima of Fatima. It's Pratika Rawal for 4 off 3 balls, and India then have lost 2 wickets after completion of 2 overs with 18 runs on the board.
1: So, Bharat ne 18 run ke score par 2 wicket gawa diye hain. Pratika Rawal aur unke saath saath salami ballebaz Shefali Verma wapas pavilion mein laut chuki hain. Shefali Verma in form batter thi. Pehli gend par unhone chakka bhi jada tha, lekin Fatima Sana पाकिस्तान की कप्तान जब गेंदबाजी के लिए आई तो भारतीय बल्लेबाजी पर अचानक सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया है. दोनों सफलताएं अभी तक फातिमा सना के इस पिछले ओवर में ही आई हैं. हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट 27 के स्कोर पर गंवाया था और उसके बाद पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाई थी. दूसरी तरफ भारत ने 18 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए हैं. नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद और सादिया की पहली गेंद को स्मृति मानधना ने खेल दिया है कवर की तरफ, रन नहीं. अगर दोनों गेंदों की बात करें तो जिस गेंद पर प्रतिका रावल आउट हुई हैं, रफ्तार से चकमा खा गई, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा निकल रही थी स्विंग होकर गेंद, और उस पर बल्ला चलाया था, बल्ले का किनारा लिया उस गेंद ने और एक कैच विकेट के पीछे लपका गया था. इस बीच में अगली गेंद जिस पर एक रन आएगा भारत के लिए, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 2 विकेट के नुकसान पर, और ये रन लेग बाई के रूप में आया है. स्मृति मानधना गेंद को ठीक तरीके से खेल नहीं पाई थी, गेंद उनके पैड पर टकराई थी और गई थी फाइन लेग की तरफ. भारत को निगाह रखनी होगी, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी होगी. लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा लक्ष्य भी कई बार मुश्किलें साबित कर जाता है. इस बात से चौकन्ना रहना होगा भारतीय टीम को. भारत की कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी इस समय मैदान पर. हरमनप्रीत कौर पहली बार स्ट्राइक पर. भारत को पिछले 2 मुकाबलों में अच्छी शुरुआत मिलती रही थी,

0: एक साझेदारी बनती रही थी, लेकिन इस मुकाबले में शेफाली वर्मा के जल्दी आउट होने के बाद वो शुरुआत भारत को मिली नहीं है। अगली गेंद पैड पर, जिसको टर्न के साथ ही खेल दिया ऑन साइड ने एक रन के लिए हरमनप्रीत कौर ने, और इसके साथ ही उन्होंने अपना खाता खोल लिया। स्कोर हो गया भारत का 20 दो विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है सादिया इकबाल का, यह दूसरा ओवर महंगी रही है थोड़ी सी। अपने पहले ओवर में उन्होंने अच्छे खासे रन खर्च किए थे, कुल मिलाकर 9 रन दिए थे, और इस दूसरे ओवर में अभी तक एक रन उन्होंने दिया है, एक रन अतिरिक्त के रूप में आया है। और सादिया इकबाल के इस ओवर की चौथी गेंद, अब सामने है स्मृति मानधना। फ्लाइटेड गेंद जिसको क्रीज से बाहर निकलकर खेला कवर की तरफ, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके, टाइमिंग उतनी अच्छी थी नहीं, बिल्कुल ब्लॉक होल में थी ये फ्लाइटेड गेंद, जिसको अपने विकेटों से दूर ढकेला स्मृति मानधना ने, जो उनकी पिछली पारी रही थी पिछले मैच में, यादगार, दर्शनीय, अलौकिक कह सकते हैं। गेंद उस बार बैकफुट पर जाकर खेला, लेकिन फिर से उसी फील्डर के पास कवर में फिर से कोई रन नहीं। आज शुरुआत में थोड़ी सी परेशान दिख रही, थोड़ी सी मुश्किल में दिख रही है स्मृति मानधना। पहली गेंद पर ही उनके खिलाफ अपील हुई थी सादिया इकबाल की ही गेंद पर, इस बार हवा में उठाकर खेला इस गेंद को फील्डर के ऊपर से, और इस बार चौका मिलेगा। बढ़िया टाइमिंग के साथ, बढ़िया नियंत्रण के साथ खेला गया स्ट्रोक स्मृति मानधना का, और इस चौके के साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। भारत का स्कोर 3 ओवर के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सादिया इकबाल का एक और महंगा ओवर, 2 ओवर 14 रन, कोई सफलता नहीं।
1: So with a run rate of 8 runs per over, India then are 24 for 2. The two batters out today in the Indian inning, Shefali Verma cotton bowl, Fatima Sana for 12 off 6 balls, 1 for 16, and Pratika Rao will caught by Munima, the wicketkeeper of Fatima, for 4 off 3. Following wickets, 1 for 13, Shefali Verma, 2 for 18 was Pratika Rawal. The battery in form for India has been Smriti Mandana, 19 in that first match when she was run out against Thailand. But what a wonderful knock she played, 124 once again run out, 64 balls, 14 fours and 7 sixes with a try rate of 193.75, surpassed Mithali Raj, who had 10,868 runs to become the leading run getter in the women's internationals with 1800s. She has now tied with Meg Lanin for most hundreds in international crickets across formats. Wonderful shot from Smriti Mandana. Remember, she got her first T20 100 against England, 112 off 62 balls. That was on the 20th of June 25 at Trent Bridge. As we are now watching Fatima, India need just 32 runs of 101 balls. Will they be able to finish it off in the power play is now the question looming large in the minds, as the next one is outside the off stump onto the front foot goes Harmanpreet. Harmanpreet will be looking to remain unbeaten, hasn't been in the best of forms with the bat. 5 off 9 balls against Thailand, 10 off 9 balls against the Hong Kong China women's team. We are here at the Dubai Cricket International Stadium for the 10th edition of the Women's T20 Asia Cup, which is a biennial cricket tournament organized by the Asian Cricket Council, featuring women's national team from Asia played in ODI and T20 formats. The first edition was played in 2004. In an ODI format, only two teams participated, India and Sri Lanka, and they played a five-match series, with Sri Lanka lost 5-0. Fatima now trying to pick up yet another wicket. India need 31 off 99 balls. Smriti is 5 off 8. Harmanpreet is 2 off 4. The T20 introduction came in 2012, with China being the country where the first T20 format for an Asia Cup game was used. India has really been the most successful team, holds the record for the most titles with total 7 wins, 4 ODI and 3 T20. Sri Lanka are the defending champions, as the next one to Smriti Mandana comes forward and drives all along the ground straight to the fielder inside the 25-yard circle, and the score remains immobile at 25 for 2. Sri Lanka beat India in the final in Jambula in 2024. This year there are 8 teams competing, divided into two groups. The Group A, consisting of Hong Kong, India, Pakistan,

0: Pakistan, Thailand, whereas Group B had Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka and UAE. Indonesia now playing in the Asia Cup for the first time. Quickly, for the benefit of late tuners, India have completely turned this match upside down with some fine bowling display as the next one has been lofted one bounce into the fence by Harmanpreet Kaur for four runs. In fact, it was Smriti Mandana who was taking strike to a ball which was short in length, and Smriti was onto the back foot playing that shot with a horizontal bat and pulling it through mid-wicket for four. She has really been in imperious form of late, continuing all that good work that she has done for India over the years. Elegant left-hander now waits for the arrival of the next ball from Fatima. The last ball of the fourth over coming up. India need 27 runs more, and this time striking on the pads, an appeal for LBW. They are virtually pleading, and up goes the finger. Fatima has picked up yet another wicket. The wicket coming off the last ball of the fourth over, and India then have lost 29 for 3 after completion of 4 overs.
1: To Bharat ke liye ek aur wicket ka patan. Ye gend Fatima Sana ki jo middle aur leg stump par thi, backport par chali gayi thi. Smriti Mandhana bilkul stumps ke samne pakdi gayi. Ek zordar appeal पाकिस्तान की कप्तान की तरफ से, और फातिमा सना की इस अपील पर अंपायर ने अपनी सहमति जताई, और इस तरह से भारत के तीसरे विकेट का पतन 29 के स्कोर पर. स्मृति मानधना 11 गेंदों में 9 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू, फातिमा वापस पवेलियन में. तो भारत के लिए थोड़े से चिंता के बादल. 27 पर पाकिस्तान ने पहला विकेट गंवाया था, भारत ने 29 पर 3 विकेट गंवा दिए हैं. हालांकि 27 के बाद और 55 रन के बीच 10 विकेट गंवाए थे पाकिस्तान की टीम ने, लेकिन स्मृति मानधना इन फॉर्म बल्लेबाज थी. उनका आउट होना और साथ ही साथ शेफाली वर्मा का आउट होना भारत के लिए थोड़ी परेशानी की बात, क्योंकि पिछले दो मैचों में हमने देखा है दो कमजोर टीमों के खिलाफ भी भारत का मिडिल ऑर्डर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सका था. आज हालांकि बहुत बड़ा लक्ष्य है नहीं, इसको देखते हुए बहुत ज्यादा परीक्षा नहीं होगी मिडिल ऑर्डर की, फिर भी ये छोटा स्कोर भारत को परेशान कर रहा है. अगली गेंद नए ओवर की सादिया इकबाल की पहली गेंद थी और इसको खेला मिड ऑफ की तरफ, रन नहीं मिलेगा. हरमनप्रीत कौर कप्तान अभी भी मैदान पर मौजूद. आज इस दूसरी गेंद का सामना कर रही है इस ओवर में हरमनप्रीत कौर. फिर से उस गेंद को ऑफ साइड में खेला, कोई रन नहीं मिलेगा. दीप्ति शर्मा नई बल्लेबाज आई है मैदान पर. बल्लेबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और जहां तक बल्लेबाजी की बात है, ऋचा घोष की जगह इस बार दीप्ति शर्मा को बल्लेबाजी में ऊपर भेजा गया है. अगली गेंद इसको सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेल दिया हरमनप्रीत कौर ने, कोई रन नहीं. जहां तक पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात है, एक से छह ओवर के बीच पाकिस्तान ने 29 रन बनाए थे, 3 विकेट गंवाए थे, 23 डॉट गेंदे थी, 4 चौके आए थे. इस बीच में तैयार सादिया इकबाल इस ओवर की चौथी गेंद के साथ. क्रीज से बाहर निकलकर इस बार टर्न के साथ गेंद को ऑन साइड में खेला मिड ऑन की तरफ, तेजी के साथ भाग पड़ी थी दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए, और वो रन अंत में आसानी के साथ पूरा हुआ. 30 पर पहुंचा भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर. फिर पाकिस्तान ने 7 से 16 ओवर के बीच कुल मिलाकर 19 रन जोड़े, 5 विकेट गंवाए, और उस दौरान सिर्फ एक चौका आया था. और 17 ओवर से लेकर 19.1 ओवर के बीच 7 रन बनाए, 2 विकेट गंवाए थे जिसमें एक चौका आया था. कुल मिलाकर 19.1 ओवर में पाकिस्तान की टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें 6 चौके शामिल थे. कुल मिलाकर 78 ऐसी गेंदें रही थी पाकिस्तान की पारी में जिसमें कोई रन नहीं आया था. इस ओवर में 2 गेंद अभी भी बाकी है, और स्ट्राइक पर पहली बार दीप्ति शर्मा. 5वीं गेंद इस ओवर की, खेलने के लिए तैयार. 92 गेंदों में भारत को चाहिए 26 रन. इस पहली गेंद को दीप्ति शर्मा ने खेल दिया है कवर की तरफ, रन नहीं मिलेगा. फील्डर वहां पर मौजूद, रन की संभावना थी भी नहीं. टॉप स्कोरर की बात करें तो

0: Rawal, who bowled exceedingly well. And I thought the Pakistan batters too should take some blame for the display in their batting 55. This definitely was not a wicket where a team could be shot out for 55. It was a combination of good bowling and some lackluster batting by the Pakistan team that led to their downfall.
1: Yeah, Pakistan ki ballebazon ne puri tarah se aatmasamarpan kar diya Bharat ki gendbazon ke samne gair zimmedarana strokes lagaye jiski wajah se unko is tarah se nuksan uthana pada aur सिर्फ 55 रन तक पहुंच सकी पाकिस्तान की टीम. दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करते हैं तो अकेली लड़ाई इस समय पाकिस्तान की कप्तान की तरफ से लड़ी जा रही है फातिमा सना ने. तीनों के तीनों विकेट अभी तक भारत के झटके हैं. हालांकि थोड़ी सी फिटनेस की समस्या उनको आई है. फिजियो मैदान पर आई थी, अब मैदान से बाहर जा चुकी हैं और एक बार फिर से इस अधूरे ओवर को पूरा करने के लिए तैयार फातिमा.
0: So here is Fatima now after being attended to by the physiotherapist into Harmanpreet. And this time Harmanpreet can do no more than to push the ball back along the track. There is no run. So Fatima Sana, despite having scored zero when Pakistan batted, has been like a one-woman army for Pakistan. She has been paddling the boat all by herself, giving all 100%, showing the intent. And managed to pick up three wickets, three important wickets of Smriti Mandhana, Shefali Verma and Pratika Rawal, up to Harmanpreet now and Dipti Sharma to take India home with just 22 degrees of 85 balls as the next one has been pushed on the offside, not for runs. Six overs gone. We are done with the power play. 34-3 India in quest of that magical figure of 56.
1: So, Bharat ne 34 run banaye ab tak. तीन विकेट के नुकसान पर पावर प्ले के छह ओवर्स की समाप्ति हो गई है और इन छह ओवर्स में भारत की तरफ से चार चौके आए हैं और एक छक्का भी आया है. सादिया इकबाल ने इन पावर प्ले में तीन ओवरों की गेंदबाजी की पाकिस्तान के लिए जिसमें 16 रन दिए और फातिमा सना एकमात्र सफल गेंदबाज पाकिस्तान की कप्तान. तीन ओवर 17 रन और तीनों की तीनों सफलताएं उन्हीं के खाते में. नए ओवर की शुरुआत होगी. दीप्ति शर्मा स्ट्राइक पर होंगी और पावर प्ले के बाद का पहला ओवर. नशारा संधू आ रही हैं गेंदबाजी के लिए. भारत का रन रेट अभी है 5.67 का, रिक्वायर्ड रन रेट 1.57 का. वैसे तो सिर्फ औपचारिकता दिखाई देती है इस मुकाबले में, लेकिन जिस तरह से फातिमा शना ने गेंदबाजी की उससे थोड़ा सा रोमांच जरूर इस एशिया कप के मैच में आया है. लेकिन भारत अभी भी इस मुकाबले में काफी आगे है. दीप्ति शर्मा.
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India becoming the fastest growing major economy.
3: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है. अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है. ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है.
2: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृतंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashvani.
2: प्रस्तुत है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगीतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पांसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निर्माण प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
3: In the National Program of Music, we now present a Pakhavaj recital by Shri Vithal Kumar Rajpura. Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Sahib Panse Gharana, Shri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Shri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Shri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vithalji's playing style is the absolute clarity of his syllables, his swift readiness, and the divine rendition of Chabi Parno, which deeply touches the heart of music connoisseurs. A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalki Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vithalji has spread the magic of his art on prestigious stages across the country. In numerous national events like Gamak Utsav of Tansen Samaroh, Kalidas Samaroh and Chakradhar Sangeet Samaroh, Vithalji has mesmerized audiences with his solo performances and jugalbandis. In today's program, Shri Vithal Kumar Rajpura is presenting Jhap Taal on the Pakhavaj. He is accompanied on the Sarangi by Shri Jagdish Barot, providing the Lehra.

यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वर्ष पान दुराले लचकत तिरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखी राधा राधा राधा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत तिरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखी राधा राधा राधा यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वृष पान दुराले लचकत थिरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखी राधा।

श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।